0: हेलो
1: हेलो करो है जाए
0: ना यारे जाओ
1: अभी कोई
0: हम है मैन रे
1: ऐसी नाम आगे सुलमान सी से फो करो के समस्या
0: हाँ करा यारे हाय अलग
1: का कोई लेंगा जगह दे
0: लो आ
1: शेरर वाले लाई पुलाने में दी दे ना शेरर
0: आ
1: आ
0: अगर
1: ना कोई ना कोई मैं कौन ओना फागुन फाग
0: आ
1: रेन कौन किनो
0: मान
1: न्यारा रे फटू दे
0: अन्यारा
1: रे फटे पेच आरे रे फटे पेच पोट
0: आहा
1: न्यारा रे फटू याम न्या डाट साकुमा
0: आहा
1: यो ना को अरे तो ना को कुंदन आरे वो बुगो कोक टेन काफ पेचाकान आरा गायो
0: यो
1: मारो को कुनो पोन बान मच वो बुगो कोक इन आरे पेचाकान मच गायो बार पोट का मेरे का गान उम्मीद तो कम से रिमेम्बर ने फोन मार
0: अच्छा इधर
1: जो कंजल
0: चले जो आ वंदी करेक्ट